पकड़ेगा भांजा बादशाह रे जैसे मछली ने खीर भेजी और क्या तो पकड़े सांजा।

पर है मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता